मैं नम तपने को अंगोरा में ये रही तरीके ते तपनान का मैं उड़े मैं तेरे ना कोई मैं नम तपने को अंगोरा में ये के तेरा ना को कनवान ते ते तारीके यो मैं कन्ने मैं उड़े एफएम ते सा वो वही को ते सा रोहने को ते सा का खाउरिंग को इन्हन नम ताई नो अंगोरा इन्हन ते ते ताई तो वना मैं तो वना इन्हें नाने ते ते सा अंगोरा का ये पनियान का वाई ने पोपो ते वाई सुआ Senang tahu orang kan yang mengapa mana aku kan orang nak kata ini kayu nak kau yang menungram tayi yang rongrong antara mienya kime tapi aku rasa itu nak wowo nak kau yang main have itu rai suwa ikhaya wah kena pemang kau yang kan aku kata orang tak kaya tangga kena kau yang te nak tayi kayu saksi ngaya me tawan nak pekan orang tepung karena tahu orang bikin tiawan orang nak merawaki arahan orang tiawan orang kiri pas mepahana pe. Ayeri pun di tante, tak kami orang mai turut turun aku im, menau studio kai, ayo ram dikini ayeri tata upaya kau nama orang dikini kaya kuangong orang.